0: बात रोग एंड स्किन केयर सेंटर सुपरिजित फार्मेसी ट्राफिक चौक देखि 100 मीटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरा हिदाङ। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 082-591-670 98578-43-123 98478-07-670
1: बात रोग एंड स्किन केयर सेंटर प्राली ट्राफिक चौक देखि 100 मीटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरा हिदाङ।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा